0: के केरल में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। दुनिया में झील की गहराई में सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जब ये फूल जो मुस्कुराते हैं,
1: झील की कहते हैं,
0: जैसे ये शाम जो मुस्किल उठाए।